के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफन्ड गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ, चैनपुर बजार, त्रिचोक प्रोपाइटर पदम रसाइली, ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153577।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो 4 बजे

0: also by Jupiter. Enjoy with us.
1: कलकति कहीँ केही पाइयो आइपुग्छ फेरि हामी माझमा आइयो अनि फर्दैन रोज बोकाल अनि म बिना साथ सोच्छु।

श्रीमती कमेज मेरो शिरमा ढाका टोपी चार जात छत्तीस वर्ण को यो फुलबारी, यो फुलबारी को महु बखेदारी।